0: दोबारा करनी पड़ी अगर।
1: यार एकदम।
0: हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबीज पंजाबी टॉक शो के इस लाइव सैशन में। लास्ट वीडियो एक्चुअली थोड़ी जी डिस्टरप्ट हो गई सी, सो आप दोबारा तो थानू मिलाने अपने मानयोग अंकल हरवंत सिंह चौहान जी ने। हाँ जी सत श्री अकाल अंकल जी,
1: रिस्पेक्टेड रेजिडेंस ऑफ कृपत, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सिख नौ जवान सभा के मैंबर्स, सबना नू लोकल कम्यूनिटी 2MOE की टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल प्रणाम नमस्ते। अज 24 सितंबर 2026 दिन वीरवार रात्रि दास हरवंत सिंह चौहान 95.1 FM ते ऑन एयर आप दी सेवा दे विच हाजिर होया है। दास अज एक हिंदी सोंग अते एक पंजाबी सोंग पेश करन दी निमाणी दी कोशिश करेगा। इस तो अलावा कुछ पंजाबी लोक गीतां दीआं धुनां पेश करन दी निमाणी दी कोशिश करेगा।

0: ठोके में आता यार।
1: ठीक है बाबे।
2: ओ बल्ले बल्ले बल्ले इन्हीं पर सताया। वो ये कौन है?
3: साला तैने नहीं पता? सेतू है। सेतू मुसे वाला।
2: वो हुने इधर की कसूर है?
3: जज तो लेके क्रिमिनल तक, ते क्रिमिनल तो लेके जज तक, सारे इन्हें सुनते हैं। यही कसूर है ता।